0: काश हमारे विषय में भी आपके यही विचार होते। एक बार कहा होता कि हम बेनजीर से सुंदर हैं।
1: काश हम आपको बता सकते हैं कि हमारे दिल में क्या है। काश आपने बेनजीर को हमारी जिंदगी में आने ही नहीं दिया होता। काश आपने इतनी जगह ही ना छोड़ी होती कि बेनजीर क्या कोई भी ना आ सके।